सभा मस्त होकर फिर आने लगी। पयामे मोहब्बत बढ़ाने लगी। मैं अल्लाह तबारक व तआला ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस विद रिपीटेड ज़ियारत ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड दोज हु कैन नॉट मेक इट फॉर वट एवर रीजन देन दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड एंड फील डाउन एंड आउट। अल्लाह तआला हैज़ गिवन अस द दुरूद एंड सलाम, रीड दुरूद शरीफ। The angels of Allah Ta'ala convey to Nabi alayhi salatu wasalam with our names. And also the person who is making amal on the sunnats of Nabi alayhi salatu wasalam, he can be in South Africa, Japan, China or any part of the world, then he is in Medina Sharif. But if the person is in Medina Sharif and is glued to the television programs there, he is neglecting his salat there, he is not following the Nabi alayhi salatu wasalam's sunnats and teachings, then he is there physically, but he is not there spiritually. So Allah tabaraka wa ta'ala must take us both physically and spiritually there. Allah Allah kaisa pyara naam hai, aashiqon ka meena aur jaam hai. Allah Allah kaisa pyara naam hai, aashiqon ka meena aur jaam hai. अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह जल्ला जलालुहू।

रहूं, मुझको फकत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का, तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस

है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं, तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं, मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शिआर में हूं, मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शिआर में हूं, रहा में बेकार जिंदगी भर बस अब तो

ये आखिरी दिन है जिंदगी के, दुरुस्त कर दे माल मेरा। ये आखिरी दिन है जिंदगी के, दुरुस्त कर दे माल मेरा। तेरी

बदी में गुजरी है उम्र सारी, नसीब तौफीक नेक अब हो। रहूं मैं मशगूल जिक्र व ताअत, बस अब यही शुगल रोज़ो शब हो। हर दम करूं मैं ऐ मेरे बारी, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह।

तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं, बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। रहे तलब में सवार सब हैं, पयादा मिसले गुबार में हूँ। तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं, बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूँ। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूँ।

या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे। मुस्तहिक गजब का है उसको अमान दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।